गुरुपुरे जी होवे दरगाह साहेब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहेब का होवे प्रकाश पंजां दे रूप विच कलगीधर पातशाह आप आ खड़ोवे पर पर के नाम दे गुलाल रंग दियां पुचकारियां मारे अपने दर खड़े प्यारियां ते कलगीधर दे हथों जिन्हां दे तन ते मन दियां चोलियां रंगियां गईयां ऐसा रंग संसार विच वेखण नहीं आया। गुरु कृपा करे ये शरीर बन जाए रंगण वाला भांडा, गुरु बख्शिश करे ये शरीर बन जाए काया, काया बन जाए रंगण वाला भांडा, ये नाम का मजीठ रंग उबालिया जाए। काया के बर्तन में नाम का मजीठ रंग उबालिया जाए, नाम का मजीठ रंग इस भांडे के अंदर पाया जाए ते कलगीधर पातशाह फिर करे आप बख्शिश। उहदे थों किसे असी देहधारी नूं ना मनीए, उहनूं हाजर नाजर प्रतख अपना गुरु मनीए, क्योंकि साहिब मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मैं रहा सुन। गुरु खालसा पंथ ने सदा कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह अंग संघ है।

अपने सिख तो कदे भी नहीं जाता है, उसके हिरदे की पीड़ा सब सुनता है, उसकी अवस्था नू सदा वेखता है। एक पल भी अपने प्यारे तो कदे दूर नहीं जाता है। प्यारे नाल प्यार ही ऐसा है, पर दुर्भाग तो साड़ी वो नैन प्राप्त नहीं हुए जिदे नाल निकट वसदा प्यारा देखने में आ जाए। वो बयान अखड़िया, वो सुंदर नैन, वो नैणा की सुंदर जोत नैणा के हुंदिया भी प्राप्त नहीं हुई जिन्हां नाल कलगी धर दे हिरदे ते बैठे दे प्रतख दीदार हो जा। सरूप इष्ट बख्शिया सोझी दीती, दसां जामियां दी आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहिब दी बख्शिश कीती ते कह दिता है भी गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। इस सब कुछ बख्श दिता ते नाल सूझ भी बख्शी, इनू वेखण वाली एक अख भी है, पर यह जाचक बन के ढह के उसके दर के उत्ते मंग से बन के कदे कलगी धर दे दरों ये मंग नहीं मंगी। पुत्र भी मंगे, संसार के सुख भी मंगे, धन भी मंगिया, इज्जत आबरू भी मंगी, सबों कुछ मंगिया, पर कदे इस दर के उत्ते आके ये मंग नहीं मंगी। हे जीवन वास पातशाह, हे कलगी धर सतगुरु, जिथे अपने महान मुबारक मुखार बिन तो उचार के ए गल आखी सी प्रगट गुरां की दे गुरु ग्रंथ साहिब जीवन वास एक बख्शिश कर, वो नेत्र भी बख्श ते जिस दे रूप विच तू बैठा प्रतख दिस वे। फिर इस महान सतगुरु की हजूरी विच कलगीधर साहिब सतगुरु पातशाह पंजां दे रूप विच आप प्रगट खरोता होवे, बन जाए ये काया का भांडा रंगन, नजीर का टिक जाए इस अंदर रंग, लिलारी होवे गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह आप, ते फिर ये अंदर जो जीवन की चोली इस नजीर रंग के भांडे विच रंगी जाए, ऐसा रंग संसार विच वेखण विच नहीं आया। गुरमुख गुरसिख जदों रंग के नाम रंग नाल चोली रंगा लवे, ऐसे सुंदर चोले दे उत्ते कलगीधर आप प्रसन्न हुंदा है। बोलो

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे। जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नू चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार ने। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

सत्यम अर्थ अनेकम अनेकायु सत्यम लोड़वंद पुरुष दाता जेड़े दानी पुरुष होंगे उन्हें आप जानते हैं एक और दानी पुरुष को नाम उसी उस सपना भी माया लेंदा है जिस तरह का उतारता है तो इसी तरह भाई साहब दसते हैं कैसे गुरु सिद्ध आवत है अनेक कैसे गुरु शरण।

सतगुरु विद्या प्रखंड कर प्रगट आग सुनाया, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन च मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जरूरत के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

0: बड़े भाग हर सिंह बने आई। फिर पंजा साहब भी गुरुद्वारा उठे है, अजे तक मौजूद है पंजा लगा गुरु नानक पातशाह का हसन मदाल, जिन्हें संगत जा दर्शन कर दया ने। एक बाबे दी बेर सियालकोट अजे तक मौजूद है गुरु नानक पातशाह वक्त दी, ओ भी गुरुद्वारा है। गुरु रामदास का जन्म स्थान लाहौर, गुरु अर्जन पातशाह का शहीदी स्थान लाहौर, गुरु हरगोबिंद पातशाह का वह भी लाहौर। इतने गुरुद्वारे हैं, ननकाना साहब जिथे गुरु नानक पातशाह ने जन्म धारिया, बाल लीला गुरुद्वारा, क्यारा साहब गुरुद्वारा, मालजी गुरुद्वारा, पट्टी साहब बाल लीला, 13-14 गुरुद्वारे ननकाना साहब के। तुहाडा तो मक्का मदीना है, मुसलमान अदार शरीफ विच है, इतना पैसा खर्च करके ते हज करन जांदे, ते तुहाडा हज ननकाना साहब, हुण देखण वाला ननकाना साहब, ते तुसी दर्शन करिया करो, तुहानू टाइम मिले ते जरूर दर्शन करो, तुहाडा वो मक्का मदीना है। किस तरह प्यार करते ने तुहाडे नाल मुसलमान, राय बुलार ने 850 मरबा गुरु नानक दे नाम लाता, वह भी मुसलमान सी, हुण भी जाओ कि तुहानू प्यार मिलेगा, मुसलमान किस तरह तुहाडे नाल पेश आउंदे ने, जिस बस च बैठे हो गए, जिस टांगे च बैठे हो गए, किराया ही नहीं लेंदे, जिहड़े जांदे ने प्रेमी उन्हां नूं पता है। तो मैं इस वास्ते अर्ज करदा हां कि मैं उत्थों आया हां ननकाने साहबो, ते तुहानू यह दसना चाहना वी इन्ने गुरुद्वारे ने तुहाडे उत्थे,
1: भारी करी तपस्या,
2: भारी करी तपस्या,
0: इत्थे रोड़ी साहब तपस्या की गुरु नानक पातशाह ने, ते गुरु दसवें पातशाह ने किथे तपस्या की।

0: तो दसवीं प्रसाद फरमाते हैं, तहां बुद प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके मेहमान जो तिहारी, तुमरी मेहमान अपने पारा,
1: तुमरी मेहमान अपने पारा,
0: हम न सकत कर।

0: पाइयता है कीर्त तिहारी को न पार पाइयता है कागद दीप सब करके कागद दीप सब करके
1: अर्थात समुद्र की मस्त है हो।

सूत कलहे न कीड़िया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार बसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नूं आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हरे दुख तत्काल कटासा। ओ वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच ओ दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच ऐसी प्रेरणा

कभी सुख में निकली के इच्छा न रखे कि मेरे पर कभी सुख आए। बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहेब जी फरमान कर रहे हैं, जे मेरा कहना नहीं मनना कि यकीन रख गुरु कभी तेरे हरित सुख में सुख की इच्छा न। बादशाह आप भी रहित

0: समृत ये जान खंडे की पाहुल छके।
1: सबसे पहला हुक्म है अमृत पान करें, दूजिया गलां बाद साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सुनाएंगे।
0: प्रथम रेत ये जान

0: पुनन संग सारे प्रभु जी सुनाई। रहो ना भाई बिना शस्त्र के संग भेद जानो, गहे कान ताको किते लैस जानो।
1: दो गल्लां दी काज जदों दो सिखां विच आ जावेगी, सिख सिख नहीं रहेगा, पातशाह आखदे ने ओ भेड़ रह जाए, उसनूं भेड़ आख्या जाए। इहनां दो गल्लां पातशाह आखदे ने, एक जदों सिख ने शस्त्र उतार देने, दूजा जदों केसां दी बेअदबी शुरू करे। साहिब कलगीधर पातशाह ने आख्या सारा शरीर फेर, पर ए दाड़ी ते केस मेरे, ए मेरे, ए मेरी अमानत, तेरा अंग अंग कटिया जावे गुरु के सिख, पर परवाह नहीं क्योंकि ओ तेरा है, पर इस उते आंच ना लगेगा। पर अज गुरु का सिख आप ही सवेरे सवेरे उसका लेके बैठ जाते, ऐ गुरु गोबिंद सिंह तेरी दाड़ी ते केस मैनू चंगे नहीं लगते, इसनू एक पासे कर देंगे, जा नाइया दे मत्था मार दे। पातशाह आखदे नहीं बख्शिया जावेगा, नहीं गति होवेगी तेरी, तू मेरा सिख है, मेरे हुक्म अनुसार नहीं चलेगा, ना इथे ना उथे सुख नहीं मिले। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कितने प्यार नाल गुरु सिख नूं समझांदे हन, आखदे मैं दूजिआं दा जिम्मेवार नहीं, ना हिंदुआं दा ना मुसलमानां दा, जो करदे हन पर तूं मेरा है ते मेरा हुक्म तैनूं मनना पवेगा, होवेगा बेमुख। ते याद कर गुरु अमरदास साहिब जी दियां तुकां कि जेको गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुकत ना पावे, पावे मुकत ना हो तै कोई, कुतो बबेकियां जाए तो अनेक जोनी परम आवे, बिन सतगुर मुकत ना पाए, पए रखण तेरे पिछों अखंड पाठ। पईआं अरदासां होवन पर नहीं बच सकेंगा इन्हां जूनां तों, नहीं होवेगी तेरी गति जे मेरी गल नहीं है। पातशाह आखदे तेरिया सब इच्छावां मैं पूर्ण करांगा, पर इन्हां दो गल्लां दा ध्यान रख, त्याग ना दे। हजूर आखदे

गुरु की फतेह बुला हुक्का हुक्का चरस तमाकू तीजा वर्तूंगा तेरे तीनों वर वेखना भी तेरिया हुक्का हुक्का।

أريد أن أطلبه الشراب. أجبرك أشك. मैं आप संग सौ तो निन्यानवे परसेंट के संगठन बन गए हैं, शायद समझ भी नहीं दे दी है। मैंने खड़ा कर देना उसे लाइन में पारचा शराब में रख रहे हैं, जिस विच पुट्ठे में रखे, जिस विच हुक्के में रखे पारचा आप दें। सारियां लाइन ये चीज़ा इको बारी कर दतिया नहीं वेखी। गुरु अमरदास साहब जी ने फरमाया गुरु के सिख इस दे पीन नाल लतां लड़खड़ांदियां हन, बंदा डिगदा। याद रखी इत्थे भी तक्के अगे भी जित पीते मत दूर हो बरल पवै तन आर। सच्चाई सुननी बड़ी औखी है गुरु के सिखो, पर जरूर सुनया करो, सुन के विचारया करो। पातशाह सानू की आखदे, पातशाह आखदे न जित पीते मत दूर हो बरल पवै तन आए। अपना पराया ना पछाणे ओ खसमो तक्के खाए, ऐसा मद मूल ना पीते देका पार वसाए। साहिब कलगीधर पातशाह आखदे पुट्ठा हुक्का चरस तमा।

Gurkret suno hai meet, par bhate uth kar his jeet. Vahe Guru Gur Mantra so ja, kar ishnan padhe jap ja. संध्या समय सुने रह रात कीर्तन कथा सुने हरिया इन मैंने मुझो एक कराए

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत भी आला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा